0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: टाइम चेक
2: यो कृष्णसार FM
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज

एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी फिरता फिरता 20% सम्म क्यास फिरता जहिले पनि जहाँ पनि क्यास फिरता लिनुभयो त एनसेल प्याक किन्नुभयो त जहिले पनि जहाँ

0: drip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: ओहो आज दाई हूँ नहीं मजा लगा तो मजा से दवाई करेना कहतू
3: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
2: ए बात तो ठीक कहलो साची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत त
3: वहां त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर परविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाए छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहां कई जाए
2: ए ओसिनो कला से वहां जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
3: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउ रोजना हो कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
2: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ ले जिना हो
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र मा जाई न वहां ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई ओतरकेल कहाँ हो वहां तो लंबा समय से कान पकती रहना जीर्ण रोग काने ढूसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा होइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कैके उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसी मशीन फे वहां मिलत
2: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहां ले जाके उपचार करेले से वजह से सुन से कही त
3: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
2: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
3: जस्तक सर्जरी के सकु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सकु उपचार नसा व हड्डी रोग के सकु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सकु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सकु उपचार सेवा देती आइल बा
2: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सकु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
3: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कू डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 वो 98-482-80-465

बाहर आखी से गिरल मोती के हर दाना टरो के नहीं से कम, बस तोहार में आपन है समिया दे से कम। यदि हुई कले से तोहार सक्कु करिए दिन है शायद में धर के, मैं तोहार संगे जिंदगी बिताई ना अनुमति मांगतू। तोहार निर्णय के अस्से में राम साइकिल वाला बंटू।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: the bunny, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: 와우, 플러스 परीक्षा पनि पास भयो। अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
3: ल है, बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
2: ए हो र? त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
3: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
2: ल, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
4: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
2: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित। ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 580 36 577, 98 580 98 195 र 98 580 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार।
5: बाबा के कान पीरा थे, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न। यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
5: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
4: हाँ, तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98 480 2697, 98 580 2697 और 98 014 83 697।
6: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
5: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
4: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
5: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
5: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
5: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
5: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
4: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
5: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
4: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: आ रेडियो लिए घूमत हो?
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना। और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे एफएम से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गऊंगा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किराऊ मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार। कार्यक्रम चना जोर गरम सुने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो श्रोताई, प्यारा से कार्यक्रम लेकर आप लोगों के दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम पर श्रोता संचालक मियाँ जी प्रार्थिक में जो सदा साथी रहे हैं आज भी हमरे चंदा जी। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, सुन के आ जाओ ये दोस्त आवाज मेरी। सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। हाँ नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम चना जोर गरम मा, जो साथी आप लोग एकदम नंबर में जोड़ा जाए सुने 8415 इसके लिए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00977 8415 के लाइन में एकदम जुड़ा जाए। कार्यक्रम का ऑडियो वीडियो दोनों सुना देखा जाए, कैसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रह जाए कार्यक्रम जो आप लोग किसी सारे फिल्म सर्च किया जी हमका लोगन का वीडियो में पाओ जी ऑडियो में तो रेडियो मोबाइल में समा डेगो वगैरह में सब बजते हैं। तो साथ ही वीडियो में भी देखे का है तो किसी सारे फिल्म फेसबुक में जाओ जाए किसी सारे फिल्म शेयर करा किया जाए लिखा जाए फट दे हम रे पूरे स्टूडियो के जितने कार्यकर्ता इमा के हैं सब कोई आप लोगन के फिल्म वगैरह के जैसे वीडियो में मिली। तो साथ ही आज के कार्यक्रम जो 1 बजे से 3 बजे तक रही और जिमा हम क्वेश्चन रखबे क्वेश्चन के उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जी। पुरस्कार कहाँ से दिया जी आप लोग जाना जाते हैं ज्योति टेलर जो सदा लाइन वार्ड नंबर 4 माँ है, जहाँ हर प्रकार के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सपारी सूट दावरा सलवार सब मेर के कपड़ा कुशल कारीगर द्वारा सिया बनाया जाता है, वहाँ से आपका टी शर्ट देवे। तो साथ ही आज 2083 5 महीना आज 4 गते भादव है यानी गते से भादव है बहन तारीख तिथि से और हमरे पाक से तो बहन सावन है। साथी सावन तो शुक्रवार के पुनवासी है, पूर्व पुनवासी जिस दिन हुए उस दिन के भोरे है भादव लागे मगर गते से भादव है तो आज 4 गते है। तो साथी नंबर में जुड़ा जाए सुने 8415 1122 के लाइन में पहला नंबर में है आप लोग ध्यान से सुना जाए कैसे आप लोग ध्यान से सुना जाए फोन भी किया जाए लगी पे लगाओ तकदीर का आजमाओ जीता जाए परहेज और किसी सारे फिल्म से ले जाओ। तो पहला नंबर में है बाप खौ रहा पूत चिकन, बाप खौ रहा पूत चिकन पोता मोछदार एक नंबर में है। दो नंबर में है शरीर के ऐसा कौन भाग है जो इंसान अपन कभो देख नहीं पावत है तो ये दो नंबर में है। तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी, उत्तर दिया जी तो हम आपका जरूर लाखों करोड़ों के बीच में आपका जा ताली के जोर लगाए के इधर से स्वागत करके हम लोग भी एकदम खुशी से ताली लगाए के आपका स्वागत किया जाए विजेता बनाओ जाए कैसे जैसे इलेक्शन चालू है ते जानो इलेक्शन चालू होगा श्रोता आप लोग एकदम दिमाग बुद्धि कहते हैं अपन अपन दिमाग ताज़ा किया जाए कि का हो मियाँ जी पूछिन है। पहला नंबर में है बाप खौ रहा पूछ चिकन, बाप खौ रहा पूछ चिकन पोता मोछदार एक नंबर में है। दो नंबर में है शरीर के ऐसा कौन ऐसा भाग है का मर्द का मिहारू का नर का नारी कौन ऐसा भाग है जो शरीर के जो अपने बूते देख नहीं मिलत है। तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जाए उत्तर दे के आपका विजेता बनाओ जी। ऐसे मैसेज भी आएगा हमारे हाथ में मैसेज भेजने सऊदी से मैसेज भेजने मुबारक खां जी लिखी ने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम मियाँ जी आपका रक्षाबंधन और मोहम्मद डेग के तरफ से बहुत पूरे रेडियो परिवार का बहुत बहुत ढेर से गर्द शुभकामना आपका भी मुबारक जी। इनके नेपाल के ठिकाना है खजुरा गांव पालिका वार्ड नंबर 4 रजनवा राहत हैं। अपने घर परिवार का भी सुनाओ चाहिए पापा महमूद खां लौंडा हसनैन खां साथी हैं बैदु यादव हैं लाल खां हैं तमाम साथी गोमती बनिया हैं सुरेश सोनी हैं और तमाम साथी लोगों का सुनाओ चाहिए कहने मियाँ साहेब आपका। ऐसे दोसर मैसेज आएगा है, सऊदीन से मैसेज आवा है, मैसेज भेजे वाले हैं, लेकिन ये सबसे पहले मियाँ जी आपका, आपके पूरे रेडियो परिवार का बहुत ढेर सैगर शुभकामना मुबारकबाद और आपके कार्यक्रम की भी बहुत तारीफ करी थे। आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था, आपके बोली बहुत अच्छा लगा था और हमका प्यारा से मेरे सरकार आए कव्वाली सुनाए दिया जाए। ठीक है, 12 रबी अव्वल के पर दिन अभरे बहारा छाए मेरे सरकार आए। ठीक है, मैं कव्वाली आपका जरूर सुने भाई। तो इनके ठिकाना पता है बठवा गांव के हैं, मगर इनके नाम भुरऊ खां हैं, मगर इस सऊदी माँ हैं। लिखने कि हम अपने घर परिवार का, यार दोस्त का, साथी संगी का, सब लोगन का, अपने सुंदर प्यारा देश नेपाल के जितने लोग हैं सब सुने थे, सब लोगन का, ऑल इंडिया और जहाँ तक आपके रेडियो बाजत है सब लोगन का हम सुना चाहते हैं। ऐसे जो हमरे हाथ में मैसेज आएगा है, मैसेज भेजें हैं लिखिने सबसे पहले मियाँ जी आपका, पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है, कोई साथी फोन लाइन में आ चुके, पहले उनका स्वागत कर ली। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, आपके नाम?
1: मोतीलाल यादव बोल रहे, बाकी गाँव से।
0: मोतीलाल जी।
1: हाँ बाबा।
0: और बढ़िया है?
1: सब बढ़िया है, आपके दुआ है
0: बस। आपका भी हमारे तरफ से आपका हमार दुआ लाग जाए, हमार जता जवानी या बुढ़ापा है सब तुरंत बाहर चला जाए है नहीं?
1: हाँ हाँ।
0: तो मोतीलाल जी कार्यक्रम शुरू से सुना जाते है?
1: हाँ सुने हम।
0: कार्यक्रम कस है?
1: कार्यक्रम तो एकदम सोने सुहागा है, एकदम बढ़िया है उनका।
0: सोने सुहागा?
1: हाँ, ओल्ड इज गोल्ड जितने तुम्हार तो कार्यक्रम का बहुत जिंदगी वो हो करी, जब तक हम तो करें जब जिंदगी
0: हाय राम ही सोने सुहागा की का कहा थे
1: मैंने, जब तक हम लोग जिंदा रहे तब तक चलो यही बात कही थे।
0: अरे के कौन कहा थे कि जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है नहीं?
1: हाँ, मैंने जब तक रहे तब तक कार्यक्रम सुन पाई कहीं के मतलब।
0: तो हाँ हम हूँ तेरे, जब तक जियेंगे मोहब्बत करेंगे तेरे सिवा और कुछ ना करेंगे, तो हम हूँ जब तक जिये। सबसे मोहब्बत हिंदू मुस्लिम जत्ते हैं सब लोगन का, तब अतने बरस काट चुके हैं हम, किसी का भेदभाव नहीं लायन। तो मोतीलाल जी उत्तर दिया जाए क्वेश्चन के।
1: एक नंबर के आम हो, आम के बिरवा।
0: हाँ,
1: आम के बिरवा आम, अब जो मैं रहते घुसली रहा है।
0: हाँ,
1: यही हो गया। दूसरा तो अपन पीठ नहीं कोई देख पावत है।
0: ठीक है, नमस्कार।
1: अरे तो कव्वाली से सुना दिया हूँ।
0: कौन कव्वाली?
1: अरे हो सके तो सुना दिया, अमर अकबर एंथोनी में के सिरदी वाले साईं बाबा।
0: सिरदी वाले साईं बाबा है?
1: हाँ।
0: ठीक है, सुना दे भाई, कव्वाली तो है।
1: हाँ कव्वाली हो।
0: ठीक है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी मोतीलाल जी रहा है, तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुनने 81415122 के लाइन में आ जाइए, मैसेज भेजते रह जाइए, मैसेज मोबाइल में भी मैसेज भेजा जी 98155936 में मैसेज भेजा जी। ऐसे हमरे जो ये कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश हर जगह पर चला था आप के प्रिय रेडियो कृष्ण सार FM 94 MHz से। तो चलिए थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद ना सुना जाए प्यारा से कव्वाली मेरे सरकार आए।
2: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो, सबैले एउटै प्रश्न सोच्छन्, खुशीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
3: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
2: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
3: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री IVF क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
4: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री IVF क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
2: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
3: धन्यवाद शुभश्री IVF, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
4: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 9816 14 16 99।

0: गंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट।
1: कौशल्या मेमोरियल हस्पिटल द्वारा एक महीने फ्री ओपीडी सेवा शुरू भएको छ।
2: कोहलपुर 9 हवलदारपुर स्थित कौशल्या मेमोरियल हस्पिटलमा स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म एक महिनासम्म फ्री ओपीडी सेवा सञ्चालन भएको छ।
3: प्रदान गरिने सेवाहरू:
1: गर्भवती जाँच सेवा, महिलाको तल्लो पेट दुख्ने समस्या, पाठेघरमा मासु पलाएको समस्या, यौनी चिलाउने समस्या, गन्नाउने सेतोपानी बग्ने समस्या,
2: एप्टोपिक प्रेग्नेन्सी सम्बन्धी समस्या, निसन्तानपन सम्बन्धी समस्या, महिनावारीमा गडबडी,
1: पाठेघरमा हुने क्यान्सर जाँच तथा सम्पूर्ण स्त्री तथा प्रसूति सम्बन्धी समस्याको चेक जाँच तथा उपचार गरिन्छ। यही श्रावण 15 गतेदेखि भाद्र 15 गतेसम्म फ्री ओपिडी सेवा सञ्चालन हुने भएकाले सबैमा जानकारी गराउँदै सेवा लिनका लागि अनुरोध छ।
2: सम्पर्क कौशल्या मेमोरियल हस्पिटल, कोहलपुर 9 हवलदारपुर बाँके। सम्पर्क फोन नम्बर 081-41-40-07 र 98-482-63-399।
4: माया बाबु, टेलर के तो सक्कु सामान हो गिल बा, अब मशीन कहाँ से नन्ना हो?
5: छी दादू, हो फिर ठहानी हो कि का उहटे हो जे बीएस सिलाई मशीन सप्लायर्स।
4: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन पैठे हैं बाबू?
5: उहाँ तो अनमोल, उषा और ताज ब्रांड का संग मेर मेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री वो मरमट कई जिठा। एक रख संग संग मशीन संबंधी सबको पार्ट पुर्जा वो सामान फे पा जिठा। अट्रकेल कहाँ हो? कुशल कारीगर हुकन से मरमट फे करा जिठा।
6: एक संगे दस्या देवारी हो छठ त्योहार समय 5-30% समय ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
4: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर, घरबाई टोल 2, पीपल चौतरा, नेपालगंज बाके। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार। मोबाइल नंबर बा 98-481-28-318 और नंबर बा 98-224-52-478। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।
7: पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया, पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया।
8: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज़, कृष्णसार जस्ते।

0: तो सुरता ही प्यारा से कवाली सुनागा, जो मेरे सरकार आए जो 12 रबी अव्वल आवे वाला है बहुत जल्द से जल्द। तो साथी बुधवार के 12 रबी अव्वल है तो इससे आप लोग नंबर में आवा जाए। कोई साथी मेरे फोन लाइन में है, देखी को कहाँ से। नमस्कार।
1: Hello?
0: नमस्कार
1: नमस्कार।
0: आपके नाम?
1: राम खिलावन थारू जमनी सतपतिया।
0: राम खिलावन और खिलावन
1: सब बढ़िया है। आज तो गर्मी बहुत है।
0: गर्मी तुरे गर्मी लागत है।
1: हाँ
0: ना, हम यहाँ ए सी में तुका एकदम तरावट दवाई दी।
1: अरे एक तो गाना सुनाई दी
0: है।
1: गाना?
0: गाना आज ना ही है।
1: अरे हाँ हाँ कवाली, मुझे तो लूट लिया हुस्न वालों ने।
0: अच्छा
1: वालों ने, गोरे गोरे वालों ने।
0: तो कहूँ लूट तो नहीं गए हो?
1: अरे पहले लुटा लुटा कर रहा तो वही याद आ जाता।
0: अच्छा क्वेश्चन के उत्तर दो।
1: नारियल?
0: हाँ।
1: हमें बिरवा खौरा रहा थे वो हरियर फल, हमें बिरवा खौरा रहा थे वो हरियर फल।

बहुत अच्छी होते इंतजार किया जी। तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में आ जाए 081415 के लाइन में आ जाए एकदम नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 0079701415 के लाइन में आवा जी। अब हमारे स्टूडियो के घड़ी में 1:39 हो चुका है साथी जी, के मोबाइल घड़ी गलत हुई, अपन सुझाए जरूर लिया जाए, टाइम मिला लिया जाए। तो इससे हमारे हाथ में मैसेज आएगा, मैसेज भेजे नहीं घनश्याम पाठक पिपरावा से, इन कहने कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके कार्यक्रम के जितना तारीफ किया जाए उतने कम है, कोई प्यारा सा कव्वाली सुना दिया जी। इसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजे वाले हैं नजीबाबाद से, मैसेज भेजे ने जो बिजनौर नजीबाबाद से मुकेश कुमार बरनवाल जी, नूह लिखिने की मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है कहने, आपकी बोली आपकी आवाज़ बहुत अच्छा लागत है, आपके चैनल जो नेपाल बाकी जिला से आवते हैं, हाँ तो सुरता नेपाल के बाकी जिला जो बिलासपुर बारा जो अपने सुंदर देश नेपाल बाकी जिला से ही कार्यक्रम प्रसार होते किस सारे FM 94 MHz FM से। तो ये कहने की कोई प्यारा सी कव्वाली सुना दिया जी मुकेश कुमार बरनवाल के चिन्हे जाने वाले सब लोगों का सुनाओ चाहते हैं। ऐसे साथी आप लोग नंबर में भी आओ जी 081415 के लिए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 0079701415 के लाइन में आवा जी। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजी ने जयसपुर वार्ड नंबर 4 शिव मंदिर चौराहा से अमरलाल सोनी जी, नूह लिखिने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, नूह कहने कोई प्यारा सी कव्वाली सुना दिया जी। ऐसे जानकी गाँव पालिका एक जो साई गांव से मैसेज भेजी ने चंद्रभाल वर्मा जी, नू कहने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है कहने, आपकी आवाज़ आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके अंदाज बोली जो अवधि ठेठर भाषा है आपके बहुत अच्छा लागत है, कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। चंद्रभाल वर्मा जी गाना तो नहीं है, कवाली ना तो गहरा जो भी कहा जी सुना देवे। ऐसे सैन गांव से जो दूसर मैसेज आवा है, मैसेज भेजी ने ताहुआर अंसारी जी, नूह लिखिने मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम, कहने कि आपकी बोली आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपका जितना भी तारीफ किया जाए उतने कम है, आपके बस यही अल्लाह अरदास किया जाता है अल्लाह पाक से कि आपकी उम्र आपकी ज़िंदगी लंबी हो, बस हम लोगों का यही दुआ है, धन्यवाद है। ऐसे दूसर मैसेज आवा है गया प्रसाद जो मोची यानी गया पैसा प्रसाद रविदास जो जूता चप्पल के जो मरम्मत करते हैं यानी ओवरहालिंग करते हैं, झोला वगैरह सब चीज़ बनावते हैं। तो इन्हों धम्बोजी चौराहा से मैसेज भेजे ने कहने कि मियाँ जी आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, शायरी लिखी ने आगे आगे डल्लभ भैसा पीछे पीछे कार, आगे आगे डल्लभ भैसा पीछे पीछे कार, प्रादी जी का राम राम मियाँ जी आपका नमस्कार। तो गया प्रसाद जी नमस्कार है, आप लोग भी हमारे तरफ से आप लोगों का भी बहुत बहुत नमस्कार है। कहने मियाँ जी कार्यक्रम जो आपके बराबर सुनित है, मगर कोई दिन मुलाकात किया जाए, आवा जाए टहरा घुमा जाए बैठा जाए तनी बोला बतवा जाए, बहुत ढेर दिन होगा देखा नहीं गा है। तो ठीक है गया प्रसाद, कहते हैं कि मौका मिली तो वही, और फिर कहने कि मौका के बाद जब है, कहते हैं कुछ हर आदमी का मौका नहीं मिला था, मगर जो कहानी माँ कहने है, हर बसर को फुर्सत नहीं है ज़िंदगी माँ काम से, हर बसर को फुर्सत नहीं है ज़िंदगी माँ काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कह लो राम से। हाँ तो साथी प्रेम करो राम से और तैसे इंसान से भी मुलाकात कर लिया जाए। ठीक है गया प्रसाद जी, आपका हम कव्वाली अच्छा सुनाई भाई। ऐसे नंगू जो छंगापान वाले हैं शिव मंदिर चौराहा से, इन्हों लिखिने सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, इन्हों कहने कार्यक्रम आपके बहुत अच्छा लागत है, कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी, हमका छंगा कहके चिन्हे जाने वाले सब लोगों का सुनाओ चाहिए थे, और आपके कार्यक्रम बराबर सुनी थे, आपके बोली आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके पूरे रेडियो परिवार का भी दिल से नमस्कार। जो यो शुभकामना है मोहम्मद डे के और उधर रक्षाबंधन के, धन्यवाद है आपका छंगा जी। ऐसे पूरन वर्मा जो बीज भंडार जो जहाँ खाद वगैरह कीटाणु दवाई बिरवा बिया के सब दुकान है, वहाँ से जो पूरन वर्मा मैसेज भेजी ने धम्बोजिन से, इन्हों कहने कि मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी, हमका आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है। ऐसे दूसर मैसेज है, जानकी गांव पालिका 4

0: बाबा कुट्टी से जो मैसेज भेजने हैं, विजय कुमार वर्मा जी शिवानी ग्रिल उद्योग से, इन्हों कहने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, कहने कार्यक्रम आपके बहुत अच्छा लागत है, अपने जितने स्टाफ हैं सब लोगन का सुनाओ चाहित है, विशेष करके खेमराज सोनकर का जो ठेकेदार हैं उनका सुनाओ चाहित है। ऐसे दूसर मैसेज आएगा, मैसेज भेजे वाले हैं दल सिंगार यादव जानकी गांव पालिका चार नहर खजुरा से, इन्हों कहने कि मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, कहने आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, जितना तारीफ किया जाए आपके बोले की आवाज़ कितना आपके जबान में आग बिल्कुल जैसे यहाँ लागत है वहाँ पहुँच जाते, तैसे आपके जबान न आपके जबान लड़बड़ाए ना कुछ। धन्यवाद है आपका अरे दल सिंगार यादव जी, इन्हों कहने कि हमका गाना सुना दिया जी गोरखी पत्थर की रे मारे गुलेलवा। हाँ घनश्याम जी ओ दल सिंगार जी माफ किया जी, गाना आपका हम सम्मार के सुना दे या चंदा जी अपने कार्यक्रम में सुना दे हैं, कार्यक्रम 1 बजे से 3 बजे तक सब चलत हैं, तो चंदा जी सुना दे हैं बलम परदेसिया के गाना है गोरखी पत्थर की रे, हम आज ना सुना पे कैसे भी फे के दिन में नाथ कवाली रात है, आप नाथ कवाली जो भी कहा जी हम सुना देवे। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजे नहीं है लिखे नहीं है, नान बाबू पवना पान भंडार से जो खजुरा पेट्रोल पंप से, इन्हों कहने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, कहने कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी, तो साथी हम गाना ना सुना पे भाई कवाली सुना जाए, कहने हम का नान बाबू कहके चीने जाने वाले विनय हैं विनोद हैं और कहने कि राजा बाबू है तमाम मिला है, विशेष कहके सुनावा चाहिए नहीं जो सलीम फेस हाउस है उनका। तो साथी अब हम चले थे पहले व्यापारी विज्ञापन के बाद माँ सुना जी सिद्धि वाले साईं बाबा।
1: फिरता फिरता 20% समस्या सफिरता
2: सहले पानी चाहा पानी
3: एनसेल पैक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9840202697, 9850823697 और 9804483697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

हाँ तो श्रोता ही प्यारा से जो शिरडी वाले साईं बाबा खैर बहुत अच्छा लाग तो हमहूँ का अच्छा लाग जो हमरे मोतीलाल जी के फरमाइश रहा है। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुने 84-15-122 के लाइन में एकदम फोन किया जाए आपके हमसे बात हुई आपकी आवाज़ भी हमरे साथ साथ में पूरे विश्व में जाई। तो इसे सुने 84-15-122 के लिए नेपाल के साथी आओ जी नेपाल से बाहर के साथी 00970-8415-122 के लाइन में जबरे देश विदेश पड़ोस भारत के साथी आवाज आई। हाँ पहला नंबर में है बाप खौरा पूत पूत चिकन हाँ पोता मोछदार एक नंबर में है। दूसरे नंबर में है शरीर के कौन ऐसा अंग है जो इंसान नहीं देख पाते। कोई साथी फोन लाइन में है देखिए को कहाँ से हैं उनका स्वागत करी नमस्कार। हाँ आए चले गए आवे जाग तो इसे हो जाते कहते हैं हाँ शिकार बेकार है। तो साथी इसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए ऐसे मैसेज आएगा है मैसेज भेजी नहीं है लिखी नहीं। सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार तो नमस्कार है संगम टेलर से जो मैसेज भेजी ने कृष्णा परियार जी लिखी ने कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है कोई कव्वाली सुना दिया जी। और मियाँ जी आपके कार्यक्रम की जितना भी तारीफ करा जाए उतना ही कम है ढेर दिन होएगा मुलाकात भी नहीं बाय। हाँ तो आवाज़ आए स्टूडियो में मुलाकात हुई जी साथी हाँ बस कहने की हमारे साथी लोगन का कव्वाली सुना दिया जी जैसे सुभाष परियार हैं मोहम्मद अफरोज खान हैं और तमाम चीने जाने वाले सब साथी लोगन का सुनावा चाहिए। तो साथी अब हम चले थे 2 बजे के टाइम चेक के तरफ के बाद माँ सुना जी प्यारा सी कव्वाली कव्वाली के बाद माँ हम आप फिर मिला जी।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जतिको तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
2: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जात है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथे टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
2: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437।

0: California. Extreme energy drink.
1: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
2: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
2: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यो गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कह के तह दिल हुआ जाए।
2: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377।
4: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: अरे रेडियो लिए घूमत हो?
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले लिए बैठे हैं ना। और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे एफएम से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हाँ तो सुरताई जो प्यारा से नाते पाक सुनागा सोड़ा आया सज गई गलिया बाजार। वास्तव में यहाँ जो मोहम्मद डेमाए 12 रबी अव्वल के त्योहार माँ हर गली गली माँ हर घर पर सब सजावटे है। तो कोई साथी पहले फोन लाइन माँ उनका स्वागत कर ली। नमस्कार।
1: नमस्कार मिया जी।
0: नमस्कार नमस्कार। आपके नाम?
1: इकबाल
0: राजा। हाय
1: नेपाल राजा।
0: नेपाल राजा
1: जानियो?
0: हाँ जानिए जानिए।
1: यहाँ हम कहा कि न जान पाए हो तो सोच में कई ले
0: आ जाओ। जवाब कौन मेर है?
1: ये खाई लिया रहे सक्कर के गिलास भी नहीं पिए तो बैठ गया।
0: बेमानी कह ली है वही हुए।
1: तो कहा जरी मानी कह रहा है कि कलौंदी घोर के पी तो बे नटिए साफ हो ही मान। तब और सुनाओ
0: कलौंजी घोर ले बा नट्टी साफ हो जात है?
1: अरे हाँ तो हाथ में चिकन लोटम डाल के देखे खून
0: नहीं कंडक राखी कच्चा कंडा और राखी दोनों एक कम गवड़ के पी लो सब सफा।
1: अच्छा अरे हाँ मैंने कहा थे इसे।
0: हाँ क्वेश्चन के क्वेश्चन के उत्तर दे।
1: तो हम कल हमने ख्याल से मैंने जीतो न जीतो हमारे पिया हो बाकी है तो किरोमिया है नहीं।
0: हाँ
1: तो कहा थे दो नंबर के हो आज के पलक जो का अपने भूत नहीं देख पावा जाते।
0: हाँ
1: और एक नंबर के हो हमको सही लागत है कि सब जीतो न जीतो हमारे पिया बाकी सब किरोमिया सही लागत है मकई।
0: ठीक है जो इच्छा आपके ना। ठीक है नमस्कार।
1: और नमस्कार नहीं सुनो ना।
0: हाँ
1: हम कौले सुनाई दिया जी बढ़िया से उसे नाम है किरण जगमगाती है अजमेर में।
0: आप ताबे रिसालत मदीने में है जब किरण जगमगाती है अजमेर में।
1: अजमेर में हाँ
0: ठीक है हम आपका एक कवाली सुनाए दे। तू आधो बताओ तो वैसे आन तान हिया हुआ।
1: अरे तो मैंने आप पूरा बताई दी तो आप तो जनते हो।
0: हाँ लो ठीक है नमस्कार।
1: अच्छा नमस्कार।
0: हाँ सागर बहेलिया रहा है नेपाल राजा उर्फ सागर बहेलिया साथी बिलासपुर से जो बीज भंडार के जो पेड़ पौधा जो साग सब्जी के बेचत हैं अपने बारी से फोन करी ना है। तो साथी इसे सुने कैसी 415 से भैंस के लेन में आवाज़ आए कैसे कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना दुकान कान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है आप ही के प्रिय रेडियो कृष्ण सारे फिल्म 94 मेगाहर्ट्ज़ से। तो ऐसे दूसरा मैसेज आवा है मैसेज भेजे वाले साथी हैं मस्त राम पाठक मैसेज भेजी ने खजुरा रोड धम्बोजी पान के दुकान से। इन्हों कहने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है कहने कोई प्यारा से गाना सुनाए दिया जी गाना तो ना सुनाए मिली पाठक जी कहे से आपका जो कवाली ना तो गहरा जो भी है सुना दिए भे। तो कहने सुने वाले अपने घर परिवार का गीता संगीता का राम गोपाल का और कहने राजा राजकुमार का और तमाम साथी लोगन का सुनावा चाहिए धन्यवाद है मस्त राम जी। तो ऐसे सुने कैसी 415 122 के लेन में आप लोग जुड़ा जाए। हाँ साथी कैसे बाद में आप लोग सकोचा ना जाए कि फोन हमारा रहेगा फोन रहेगा हम बात नहीं कर पावा। तो साथ ही इसे नंबर में जुड़े रहा जी तो हम फिर चली थे छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद में सुना जी प्यारा से कव्वाली।
2: अब सुनोस श्री स्टील्स रेडियो कथा तेसरो तथा अंतिम भाग। शर्मा जी को घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको छ। झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ सब धेरै डराएका हुन्छन् तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री FE550D बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौँपछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
3: वाओ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो। अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
4: ल है, बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
3: ए हो र, त्यहाँ के के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
4: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
3: ल, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
5: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
3: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 580 36 577, 98 580 28 195 र 98 580 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार।
6: आज म एकदम खुसी छु।
7: हैन, आज किन यसरी हाँस्दै आएकी छौ त?
6: आज मैले रेडियो कृष्ण शर्मा एउटा राम्रो कलेजको विज्ञापन सुने, मलाई त्यहाँको विशेषता एकदम मन पर्यो। म त भोलि नै बाबालाई भनेर जान्छु।
7: ए हो र, ल ल भन न त, तिम्रो रोजाई कस्तो रहेछ, हामी पनि जानु।
6: ल सुन, त्यहाँ त गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक प्रविधिद्वारा अध्यापन र आफ्नै भवन सहित अत्याधुनिक सुविधा भएको नेपालगञ्ज 12 अवस्थित जिएम कलेजको बीबीएस प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना खुलेको रहेछ। अनि त्यहाँ त सिप अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिमहरू, पर्याप्त अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, एजुकेसनल टुर, सिए काउन्सिलिङ क्लास सञ्चालन, मोटिभेसनल क्लास, आइसिटी क्लास, एसी क्लासरुम, इन्डस्ट्रियल फिल्ड भिजिट, क्रिकेट मैदान, बास्केटबल कोर्ट तथा अन्य खेलकुदका क्रियाकलाप, क्यारियर काउन्सिलिङ, जब प्लेसमेन्ट तथा क्याम्पस सेलेक्सन लगायतका विविध कार्यक्रम रहेछन्। यो विज्ञापन रेडियोमा सुनेपछि मैले त यही जाने निर्णय गरे। अब भन तिमीलाई मेरो निर्णय कस्तो लाग्यो?
7: हो रहेछ, एकदमै ठिक लाग्यो मलाई त। अब म पनि मेरो बहिनीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पास गराउन सफल कलेज जिएम कलेज नेपालगञ्ज 12 मुक्तिपुर बाँकेमै भर्ना गर्छु।
6: ल सुन, त्यसो भए 98 580 40 388, 98 045 086 26 र 98 580 85 040 आजै सम्पर्क गरेर विस्तृतमा कुरा बुझ है।
7: ल ल हुन्छ हुन्छ ल।
8: नमस्ते दाई।
9: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिनपछि देख्यौ त भाइ।
8: विदेश जान आँटेको दाई, प्रोसेस गर्दै थिए। अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
9: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त। अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
10: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
11: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीको साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
6: हाम्रा विशेषताहरू:
11: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
6: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर, थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपिडी सेवा।
11: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान, बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
6: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
11: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबीएफ काठमाडौँका निसन्तान, बाझोपन, महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्येबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
6: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, इको कार्डियोग्राम, इको ईसीजी, डिजिटल एक्सरे सेवा।
11: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
6: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40% देखि 50% सम्म विशेष छुट सेवा।
11: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि, एनआईसी एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला, कारकान्तो चोक, नेपालगञ्ज।
6: सम्पर्क फोन नम्बर 081 530 274
12: र 98580 21 822।
13: ओहो सर, कार्यक्रमको सबै तयारी त भयो तर कहाँ गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेन, के गर्ने होला?
14: किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, न्यू कैलाश दर्शन होटल छँदैछ नि।
13: कस्तो होटल हो कुन्नी? हामीले खोजेको सुविधाहरू छ कि छैन?
14: किन नहुनु? ल सुन्नुहोस्, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका राजा गेटदेखि 500 मिटर पूर्व रहेको यस होटलमा त गाडी पार्किङको सुविधा भएको, एसी रुमको व्यवस्था भएको, क्याबिन सहितको रेस्टुरेन्ट भएको, कार्यक्रमका लागि हल अनि अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा खानेकुराको साथै बसोबास पनि व्यवस्था रहेको छ। एनिभर्सरी, बर्थडे तथा विशेष पार्टीको अवसरमा 15% विशेष छुटको पनि व्यवस्था छ।
13: यति सुविधा पाएपछि त अब हामी ढुक्क भएर न्यू कैलाश दर्शन होटलमै कार्यक्रम गर्नेछौँ।
14: हजुर, न्यू कैलाश दर्शन होटल, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20, राजा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484756।

0: इमरान वासी कवाल एंड पार्टी मुंबई से मोहित भाई की शादी के सिलसिले में ये खूबसूरत सा प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद किया गया है रोशनी वारसी जी के साथ मुकाबला। तो मेरा क्या कहना है रोशनी जी से,
1: गोरे गालों की कसम, काले बालों की कसम, और झूठा फोन नंबर देकर जो भागी थी उस हसीना

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840821380।
4: अम्मा के दवाई करावे के है लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
5: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
5: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक OPD सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
4: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
5: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी
1: संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज।

0: हाँ तो श्रोता ही प्यारा से कव्वाली सुनागा छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद में आप लोगन का फिर से स्वागत है। तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415 से बैच के लिए नेपाल के साथी आज नेपाल से बाहर के साथी 00970 8415 1022 के लाइन में आवाजी कार्यक्रम जो प्रायोजक हैं कार्यक्रम के जफर दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 में है, जहां सब मेर के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट यानी सब मेर के कपड़ा सेट है, वहां से पुरस्कार आपका टी शर्ट दिया जी। तो साथी इसे पहला नंबर में रहा है बाप खबरा पू चिकन पोता मोछदार, एक नंबर में है और शरीर के कौन ऐसा अंग है जो अपन देख नहीं मिलत है। तो साथी दोनों उसका सही उत्तर दिया जाए, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जाए। तो साथी कार्यक्रम जो चला था आपके प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 मेगाहर से जो बीफे की आवत है 2 बजे से 1 बजे से 3 बजे तक रहा था। हाँ तो कोई साथी मेरे फोन लाइन में हिनी नी नी टी नी नी पी नी नी हाँ नमस्कार।
1: सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम सलाम, आपके नाम?
1: महबूब अली अंसारी।
0: महबूब अली, और हो?
1: और मियां का है हाल खबर?
0: हमार के तो सब ठीक बानी, अपन बतावा।
1: ठीक है, और बहुत देर से फोन लगाई था, पकड़ते नहीं रहा पकड़ी से
0: तलाव रहा नहाए तू जो पाक हो जात फोन खन खन लागे लागत।
1: और का है?
0: ठीक है, अपन पुरस्कार ले नहीं आयो।
1: अरे पुरस्कार जब दो तीन तो इकट्ठे हो जी तब आइए।
0: ना साथी, एक हफ्ता के बाद माओ के कोई नेमे नहीं है।
1: आए
0: हफ्ता के बाहर एक नेमे नहीं है कोई, वही
1: चराली आवा आवाज नहीं समझ रहा आपको।
0: कहते है हफ्ता से आगे कोई नेमे नहीं है,
1: तब तो हमारा चला गया पुरस्कार।
0: ना है तो अभी आज चले आओ।
1: आए
0: आप बलाई थे चले आओ आज।
1: आवाज चले तो दुकान में कोई है नहीं, लड़का भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है,
0: कोई बलाए ले 3 बजे भर हम चले आओ। 5 मिनट के रास्ता 10 मिनट के रहे कौन बड़ी दूर है।
1: अरे तो ठीक है, मुझे तुम सवाल करे के जवाब ले लो के बाद में देखा जी।
0: हाँ हाँ बताओ।
1: एक हो आम के बिरुआ,
0: हाँ
1: जो बाप रहा थे खौरा और के फल रहा थे चिकना आम और पोता हो गुसली के,
0: हाँ
1: और दूसर हो आवाज जो कोई देख नहीं पाओ तो करीब के।
0: ठीक है, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: हाँ साथी महबूब अली अंसारी रहें रानी तलाव से था साथी, इसे सुने कैसी 415 122 के लाइन में आवाज़ आ कह से कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाल पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चला था आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 मेगा। तो साथी आप लोग फ़ोन किया जाए सुने कैसी 415 122 के लाइन में कहे से कार्यक्रम के समय भी धीरे धीरे धीरे धीरे अपने तरफ ताने लाग है हमका भी। तो इससे हमारे हाथ में मैसेज आएगा, मैसेज भेजे नहीं, मैसेज भेजे वाले साथी हैं ये लिखने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। ये रहीस खान जो नेपालगंज घरवाई टोला से मैसेज भेजे ने कहने के आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है और हमका भी कव्वाली सुना दिया जी, आप ताबे रिसालत मदीने में है जब किरण जगमगाती हैं अजमेर में। ठीक है, हम कव्वाली आपका सुनेबे। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजे वाले साथी हैं लिखने कि आपके कार्यक्रम के हम नेमी सुरता हन, आपके कार्यक्रम हम बहुत प्यार प्रेम से सुनित है। हंसराम साहू जो बुजई गाँव चौक से कहने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है कहने आपके कार्यक्रम के।

बहुत तारीफ किया जाते हैं मियाँ जी, आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, धन्यवाद है। कहने कोई प्यारा से कोई भी गीत संगीत सुनाए दिया जी, ऐसे दोसर मैसेज आएगा है, मैसेज भेजे वाले साथी हैं अकल घरवा से मैसेज भेजी है, जो माधवराम यादव जी लिखने की कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है मियाँ जी, कोई प्यारा से गाना सुनाए दिया जी। साथी हैं चेतन है, चेतराम है, मीना है, कृष्णा है और तमाम साथी लोगन का सुनावा चयन है। ऐसे पेड़ारी से मैसेज भेजी है महेश प्रसाद थारू जी, नू कहने की मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार है साथी इनके हैं, कहने छेदा हैं और तमाम साथी हैं, सबका सुनाओ चाहिए। तो साथी अब हम चले थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद में आप लोग सुना जाए कवाली आप ताबे रिसालत मदीने में है जब किरण जगमगाती हैं अजमेर में।

0: अवसरमा प्रस्तुत छ सुविसु अपर्च्युनिटी। यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले पाउनुहुनेछ 25 MBPS इन्टरनेट र क्लियर टिभीको फुल HD प्याकेज प्रति महिना मात्र ₹1040 र 65 भन्दा बढी HD च्यानल भएको क्लियर टिभीको प्याकेज प्रति महिना ₹221। साथै दामी म्युजिकको प्रिमियम प्याकेज 3 महिनाका लागि निशुल्क। शर्त र नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np सुबिसु।
1: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए। वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
2: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथ गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
1: विशेष सुविधा
2: अब हरेक इतवार के दोपहरे 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
3: देर न कीन जाए, आजे स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081 530 598।

हाँ तो सुरता रख लो अब लाज दुखिया की ख्वाजा पिया। खैर बहुत अच्छा कवाली रहा है, आप ताबे रिसालत मदीने में है। तो साथी अब हम फोन भी ना ले पेबे, मैसेज भी ना पढ़ पेबे, कहे से कार्यक्रम के एकदम समय खत्म है। तो साथी आप लोग एकदम जो ये कार्यक्रम सुना जाता है तो आप लोग एकदम जान जाओ जाए कि आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 MHz से कार्यक्रम प्रत्येक हफ्ता के बीफ के 1 बजे से 3 बजे तक रहा है, जिमा आपका ज्ञान गुण दिमाग बुद्धि वाला कार्यक्रम, फिर उमा पुरस्कार भी आपका है, आपके नाम विजेता माँ गवा तो आपके पूरे विश्व माँ कहाँ कहाँ बड़े बूढ़े अपन वीरान गरीब अमीर सब लोग ही कार्यक्रम का सुनत हैं। तो आपके जब नाम विजेता के जात है तो आपका बहुत धन्यवाद लोग देते हैं कि देखो दिमाग देखो बुद्धि कोई के बाप के ना होए, सही बताए फलाना आदमी या फलाने जगह के फलाने जिला के फलाने गांव के। तो साथी जैसे आज के फ़ोन करे वाले साथी हमरे रहे मोतीलाल यादव रहें, बाकी गांव बाके से ऐसे राम खिलावन थारू रहें जमनी सतपुतिया बर्दिया जिला से, सागर बहेलिया रहें जो नेपालगंज बिलासपुर से, ऐसे महबूब अली रहें नेपालगंज जो रानी तालाब से, मगर आज के सबसे फर्स्ट में आए हैं मोतीलाल यादव बाकी गांव बाके से। हाँ मोतीलाल जी आपका बहुत बहुत बधाई है, आपका पुरस्कार टी शर्ट मिला, टी शर्ट कहाँ से मिला वो का आप लोगन का भी बताइए। तो पहला नंबर में रहा है जो कहते हैं बाप खौ रहा पूछ चिकन पोता मोछदार। हाँ तो साथी हुए बाप खौ रहा आम के बिरवा हो फल हो पूत, और पूत के पूत जो होते घिसली उके देखो मोछ सुतरा रहा थे तो उके मोछ जामा तो सही बहुत रहा है। ऐसे इंसान अपन शरीर के सब अंग देख लेते हैं मगर अपन पीठ नहीं देख पावत है, पछाड़ी पीठ नहीं देख पावत है, ये 2 नंबर मारा है पीठ। आपका बहुत धन्यवाद है आपका मोतीलाल जी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू मास्टर, जहां सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट सब मेरे के कपड़ा सेत हैं। तो जाओ उनका भी उनके पूरे स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद दी थे कार्यक्रम का। देश दुनिया में जितने लोग सुनें सब लोग उनका बहुत बहुत तहे दिल से मोहम्मद देख के तरफ से उधर आप लोगन का धन्यवाद दी थे कार्यक्रम का। देश दुनिया में जो ऑडियो वीडियो का दोनों पठान हमरे पराविक माँ चंदा जी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। प्यारा से कव्वाली हमका तैबा दिखा दो चंदा जी, हमका तैबा दिखा दो हमार नबी, ये जो नात के टोन बाजत है थोड़ा दूसर टोन हो, तैबा हमका दिखाई दो हमार नबी, दिल की हसरत मिटाई दो हमार नबी, वो दूसर कव्वाली नात हो ये दूसर हो जो आप बजावा जाते हैं, फरमाइश दूसर किया है आपके टोन में आएगा है सुरता हमरे जो हम सुन लिया है तो सुरता भी सुनत हुई हैं। तैबा हमका दिखाई दो हमार नबी। हाँ तो साथी ऐसे कार्यक्रम जो आप लोग 1 बजे से 3 बजे तक बीफे के आवत है कार्यक्रम, और जो ये कार्यक्रम प्रत्येक हफ्ता के शुक्रवार के विदा है, बाकी आपके कार्यक्रम पूरा कार्यक्रम पेक है। शनिवार के संध्या वेंडम चलावत हैं कार्यक्रम घर के नुस्खा, ऐसे एतवार के चंदा जी चलावत हैं, सोमवार के मियाँ जी चलावत हैं, मंगल के चंदा जी चलावत हैं, बुध के चंदा जी चलावत हैं, बीफे के फिर मियाँ जी, खाली शुक्रवार बराए के कार्यक्रम सब पेक हैं साथी। तो आज के ही कार्यक्रम आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ के सुनागा, आप लोगन का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। प्यारा से नाथ के साथ साथ माँ हम पर सोता संचालक मियाँ जी विदा ली थे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रङ्गा उदैदेश मेरो एभरेस्ट
1: बीर डेन्टल बीर डेन्टल बीर डेन्टल
2: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत ताउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-532-375।
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
5: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमाम मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जात है।
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
5: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बाके, संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9808-25-40-37।
6: नींद आए हमको हाय जग
4: सोना है। बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत है। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान के मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके, संचालक पूरन चौधरी, संपर्क नंबर 9848-20-697, 9858-23-697 और 9814-83-697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
4: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पिराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही?
7: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए, वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
4: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
7: सुनो, हुआ औरतन के बाँझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
8: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहदिल हुआ जाए,
7: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगरपालिका वडा नम्बर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगरपालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377।
9: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
10: Back to back.
11: In this song on
10: Stay tuned.

0: सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
1: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
0: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
1: सम्पर्क नम्बर 081535717।
2: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगन के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथन लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथन कान कम सुनने वाले बीमारी लोगन के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
2: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
3: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
4: Back to back. In this song on. Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रंगाउ देस मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी